0: குரங்கு பெடல் படத்திற்காக அளித்த பாடலை கேட்டோம். கோல்டு தேவராஜ் பாடியிருந்த அந்த பாடலை ஜிப்ரான் இசையில் வந்திருந்த பாடல். பாடலுக்கு வரிகள் பி மணிவண்ணன்.
1: सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना. शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है.
2: ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान. ये हुई ना बात.
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके.
4: वेरी गुड.